गावन से मैं चेतनायावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन हो पाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाए।

बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन जगावे मन महे सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल।

वाजे पांच शब्द जत कर सुभा गए, कर सुभा गए शब्द वाजे कला जत कर धारिया। पांच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया।

एकड़ी थाते बाई गुरुआ ने रौला सुन के मखन चारी सारी रात सोचते रहे। अरदासा कितिया निश्चा किता के मैं हुण पूरे गुरु दी भाल करके ही जावांगा। 11 महीने का समा हो चुका सी गुरु हरकृष्ण जी महाराज ज्योति जोत समाया, पर असली गुरु का पता नहीं सी लग रहा। मखन चारी चाहते सन के दसवां ठीक थाते पुजना चाहिए है। उन्होंने मन में सोच सोच के विचारिया के जो भी असली गुरु होगेगा मेरे दसवंध की वार्ता आप दस के अपना दसवंध आप मंग लेगा। यह सोच के मखन शाही ने सारे बनावटी गुरु आगे दो दो मोहर आके मथा टेकना शुरू कर दिया। सब ने बढ़ चढ़ के असीसा दिखा, किसी ने रेशमी सरोपा दिता, किसी ने प्रसाद दिता, किसी ने कुछ से किसी ने कुछ, पर जहाज की वार्ता से दसवंध की गल किसी ने सुनाई। अखीर भाई मखन चारी पिंड के सियाने बंदे को पुछते ने कि इतने कोई होर भी गुरु है। एक सज्जन जिस तरह भाई मखन चारी नु कह रहा है उन्होंने बोलने ढाई यथा भी सियाड़े चे।

हे बीठल, श्रोताजन, बीठल का अर्थ है वन स्टैंडिंग अलूप, भाव माया दे प्रभाव तो परे रहन वाला, भाव प्रभु। मेरी जिंदगी दी बेड़ी झखड़ विच फस गई है, मैं इसनू चप्पू लान जोगा नहीं हाँ। प्रभु तेरे इस संसार समुंदर दा मैनू पारला बनना नहीं लगदा।

तेरा नाम दे हे बीठ पाव हे प्रभु बेनती करता है। समुंदर विच ठल्ला पै रही हैं, मेरी बेड़ी चखड़ दे मुंह आ पई है, ते मैं ना ही करना जानता हाँ। मैनू अपनी बांफड़ा दाता बांफड़ा

इस गल तो कोई भी मुनकर नहीं कि आपां सारियां ने इस दुनिया दी यात्रा मां दी कुख तो ही शुरू कीती है। तां फिर मां नूं एक खास दिन क्यों याद कीता जांदा है? मां दा दिन मनाउण दा पिछोकड़ इतिहास मुताबिक ग्रीक विच देवी दी पूजा तो शुरू हुंदा है। इस देवी दा नां सी रिया।

गुरु रामदास साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 164 उपर सुशोभित बचना राही इस मां दे रिश्ते नूं इस तरह फरमांदे हन, माता प्रीत करे पुत खाए।

0: जाए हमारे, दिल मिलिया दुख जाए हमारे।
1: गुरु साहिब बेनती सुभाव अकाल पुरख अगे जोड़ी करदे हन, हे हरि मैनू अपने ओ सेवक मिला जिन्हां दे मिलिया मेरे सारे दुख दूर हो जान ते मेरे अंदर आत्मक आनंद पैदा हो जाए।

0: ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: माता प्रीत करे सिखाए।
0: सिक्खी विरसे नाल जुड़े श्रोतियो, दुनिया विच मां ही है जो आखरी दम तक बच्चियां दी खातर कुर्बानी करदी है। इस दुनिया तो जान तो बाद भी ओ पीढ़ियां तक अपना प्रभाव छड़ जांदी है। विचारो जरा, जदों कोई थक्या टुट्या राही दो घड़ी आराम करन लई किसी रुख की घनी छां विच बैठदा है, जिस नाल उसनूं सुख मिलदा है, तां सुते सहत ही वह प्यार भरी नजर नाल उस बूटे वल वेखदा है। ठीक इसे तरह ही परदेसां विच भी जदों कोई मनुख सारे दिन की कठिन घालना घाल के थकिया होया घर पुजदा है, तां उसकी पिठ उत्ते मां दा प्यार भरिया हाथ फिर जान पिछों उसकी सारी थकावट उतर जांदी है। अपने आप नूं ओ प्रसन्न चित नजर आंदा है। किसे सियाने दा कथन है, बुकल मां दी स्वर्ग दा झूटा दुख भुला दिन दा इक हूटा।

गुरु नानक साहिब जी ने बखूबी नाल फरमाया है कि हे सतसंग भैनो ते हे सहेलियो, आओ प्यार नाल सतसंग विच इकठियां होइए, सतसंग विच मिल के उस खसम प्रभु दियां गल्लां करिए जो सारियां ताकतां वाला है। हे सहेलियो, ओ सदा थिर मालक विच सारे गुण ही गुण हन, उस तों बिछड़ के ही सारे औगुण साडे विच आ जांदे हन।

हे दुनिया दे लोको, तुसी एक औरत नू क्यों निंददे हो जिस तो तुसी आप पैदा होए हो अते राजे भी उसकी कुख चो ही पैदा होए हन जिस नू तुसी महकलंकी कहंदे हो। प्रोफेसर जी, इस्त्री विच जज है, आचार है, सोच है, आत्मिक हुलारा देन दी शक्ति है, सूखम है, पदार्थवादी नहीं। जे निरोल पदार्थां वल वेखण लग पईए तां सिर्फ बौद्धिक पद्धर ते ही रह जाएगी ते उस दे नेड़े रहन वाला पुरुष सयाद भाव बुच्चड़ बन जाएगा। मेरा सियाद ही नहीं सगो जिना सहारे समाज खड़ा होया है वो सारा ढांचा ही खेरू खेरू हो जाएगा। सील सुच संजम ते सच सारे ग्रह विच्चों निकल जाएंगे अते जिंदगी जीवन जोगी नहीं रहेगी। गुरु नानक साहिब जी का फरमान है, रन्ना होइया बोधियां पुरश होए सयाद सील संजम सुच पन्नी खाना खाज अहाज शर्म गया कर अपने पत उठ चली नाल। सिखी विरसे दे वास गुरु साहिबान ने इस्त्री नूं जिस वेले मां भैण पत्नी धी दे रिश्तियां विच वेख्या है तद इस नूं किसे ते निर्भर होके नहीं सगों इस दा अपना नवेकला दर्जा दर्शाया है। इतिहास गवाह है कि जे माता भाग कौर जिन्हां नूं सिख जगत प्यार नाल माता भागो जी आखदा है बेदावीए सिंघां नूं वापस लैके कमांड करदी हुई खदराने दी ढाब ते जंग ना करदी तां संभव है खालसे दा इतिहास अज नालों वखरा हुंदा। माता भाग कौर नूं कमांड करदी वेख श्री गुरु गोविंद सिंह जी नूं इक अनोखी तसल्ली हुई कि हुण खालसा पंथ नूं कोई खतरा नहीं। जिस कौम विच औरतां रक्षा करन दे काबल हो जाण ओह कौम कदे मर नहीं सकती। औरत तां सदा अपना घर ही बनदी रहिंदी है। गुरु अर्जन साहिब फरमाउंदे हन

0: जगदीश।
1: माता पानी जी ने असीसा दे पंडार विखेरदे होए कहा, पुत्र नाम जो जीवन दिंदा है सदा पींदे रहो, सदा ले तुहाडा उच्चा आत्मिक जीवन बनिया रहे, आत्मिक खुशियां कोल रहन नाल सब आसां पूरियां हुंदियां हन। जद आत्मिक आनंद कोल होवे तां चिंता कदे भी अपना जोर नहीं पा सकदी।

श्रोता जन, माता जी दिया इना असीसा सदका ही श्री गुरु अर्जन देव जी नाम दी मूरत, रजा दी सूरत, कीर्तन दे पंडार, बाणी दे बोहित, सदा आत्मक आनंद ते खेड़े विच खेड़े रहे, जिसनों अविनाशी खेम कहा जाता है।

0: श्रोता जन तुसी ये प्रोग्राम साडे वेब पेज तो डाउनलोड करके भी सुन सकते हो। जानकारी ले नोट करो जी, साडा वेब पेज पता है www.singsabha.com। स्पेलिंग नोट करो जी, SINGHSABA। जी हाँ, सभा नु असी SABA स्पेल कीता है। क्यों ना नाल लगता असी अपना ईमेल एड्रेस भी याद करा देगी। साडा ईमेल एड्रेस है जी GWSSA@thalas.net।
1: जेकर तुसी ये प्रोग्राम इंटरनेट ते सुन रहे हो तो अपने विचार सानू ईमेल करो जी, अते अपने मुल्क दा नाम भी जरूर लिखो। साडी ये हमेशा ही कोशिश रहेगी कि तुहाडे विचारां दी रोशनी विच इस प्रोग्राम नू होर भी चंगेरा बना सकीए। याद रखो, ये प्रोग्राम विनियमित लेख विच हफ्ते दे विचकार भी सुनिया जा सकता है। कुछ नवे अते पुराने टाइम इस तरह हन।
0: ऐतवार नवा प्रोग्राम 7:30 शाम नू, दूसरे दिना विच ए प्रोग्राम दोहराया जांदा है। सोमवार, बुधवार अते शुक्रवार दोपहर 12 बजे, मंगलवार, वीरवार अते शनिचरवार शाम नू 7:30 बजे। पंजाबी जवान दे प्रेमियों, मन तां नहीं करदा कि असी तुहाडे कोलों छुट्टी लईए, पर की करिए, समा कदे किसे दा इंतजार नहीं जे करदा। अगले हफ्ते एक बार फिर नवा प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे। तद तक ले परमिंदर कौर, हरदीप कौर,
1: पलविंदर कौर
0: अते साडी सारी टीम नू इजाजत दियो जी।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को पाती राम गोसैया जी के जीवना मोहे नाम सार हो मैं जान तेरा मेरी हर हो दुखत जान कर हो सपाई चरण न छाड़।

0: तेरी।
1: जद मैं वेखा रहमत तेरी होई बल्ले बल्ले कह नानक हमनीत करम तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा।

दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन प्रीतहीन रीतहीन सहज स्वभाव री कहो।

तो सब किस मेरी जिंदड़िए सो डरे जिन पाप कमते राम जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन दुष्ट कपते राम गुरपू

जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर रव रहे मेरी जिंदड़िए पार ब्रह्म प्रभ दाता राम। ताका

ज्यो बालक पित माता राम सहस सियाणप नह मिलह मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम छका एक बिहागड़ा महला पंजवा संत घर पहला।

सतगुर महल बुलाए एक भरम भूले फिर दिया अंत तेरा तू है जान है तू सब मह रहया समाए सच कह नानक सुन हो संत हो हर वरतै धर्म ने आए आव हो मिलो सहेली हो मेरे लाल जियो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा शोभा पाई जिनको बधासै धुरो लिखिया तिना रहन दिन लिव लाई है हों मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा दह दिस खोजत हम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमयो हर रस चोया जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाई जन कह नानक सतगुर मलाया हर पाए अड़ा घर आए राग बिहाजड़ा महला पंजवां अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोबिंद लालन मिलो कंत नमाणिया नैन तरसन दर्स परसन नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करूं उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना तीजी है खान पान श्रृंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिलै नानक पयंपै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा ने दे ब्रह्म पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इश पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवां कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागै तेरा पाणा राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगथ अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बालहीन नीच अजाना बिनवंत नानक।

ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा मोहल्ला पंजवा खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्श पेखे दीजिए सम्राथ पूर्ण सदा निचल ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्राण प्यारे जप तप बरत कीने देखन को चरना राम तपतना कतह बुझे बिन स्वामी सरना राम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण औगुण ना बिचारिये दीन दयाल गोपाल प्रीतम सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन होना बीसरे आनंद आनंदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरे अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना हर बिस्तर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे बिहागड़ा मोहल्ला पंजा।

गुण गपालना जपह रसना फिर कदहो से देह आवे तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते जम मग गौन अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिर दुहेली तू बलवंच लूक करह सब जाने जानी राम लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखन हारा राम पतत उदाहरण हर बिरध तुम्हारा राम पतत उदाहरण सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंध कूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला सरन तेरी कट महाबेड़ी एक नाम दे अधारा बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मलाया राम सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद बनोद सद ही गुण गोपाल नित गाई है भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है गह कंठ लाए सहज सुपहाय आद अंकुर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतहू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनहो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कलेश भंजना सरन तेरी रख ले हो मेरी सर्ब मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो कर के चेरे तू समरथ सदा।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रमते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समरथ स्वामी पैज राखो।

कल्याण मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया नानक दर्शन देख जीवे गोविंद गुण निद गाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो धर्मीरिया मोन कत धारी ना तू नेत्री देख चलिया

स्वर्ण रूपा सगल ऊने काम पुत्र कलतरना संग शोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे जागत कत नाही राम माया झूठ रुदन केते बिललाही राम बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियाणप अपाव थाके जह भावत तह जाही आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट कट आही बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती घर जाही नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई है बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है हों हों करतना तृष्ण बूझै नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के कीतिया पछतानी तार अनग्रहो अपना कर लीना राम पूजा गह काड लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले रतना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो हर मलाए

पाते सुख पाईऐ, होर थै सुख ना भाल। गुर कै शब्द मन भेजीऐ, सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिना कौ

खली सब होई, तुद जेवड दा तार मैं कोई नदर ना आवई, तुद सब सैनु दान दिता, खंडी वरपंडी पताली पुरी सब लोई, रोक महला तीजा मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव शब्द साधना पायो, मन हट क्या गुण गाय, नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए महला तीजा, अपना आपना पछाण मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा दी खसलत ना गईया, अंधे विचड़ चोटा खाए, सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सैसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए, काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित धंदा करतवे।

परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी कृपा दा सदका श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की छत्र छाया हेठ जो पांच दिनां दे जोड़ मेले चल रहे हैं, अज आप संगतां चौथे रोज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों विच पुजे हो। सत स्वरूप सतगुरां दे नेत्रां नाल दर्शन कर रहे हो। सत स्वरूप गुरु जी के बचन कन्नां द्वारे श्रवण कर रहे हो। सत स्वरूप ही बाणी दी बुद्धि द्वारा विचार, सत स्वरूप ही गुरां दा उपदेश। वो चरण सत हन जो सत नूं परसण वास्ते तुरदे ने। चरण सत सत परसण है। वो जेबा ही सच है जो सच बोलदी है। वो कन ही सच हन जो सच सुनदे हन। वो हाथ पैर सच हन जो सच दी दसन मन दी किरत करदे हन। वो मस्तक सच धन है सच है जो सच्चे सतगुरु दे चरणां विच आके झुकदा है। सतगुरां ने कृपा कीती है, साडा सुभाव है जो साडे अनुकूल चीज ना होवे उनू असी खराब कह दिंदे। इस करके मीह पैण नूं भी आपां कह दिंदे मौसम खराब हो गई। ते होई तां भाई चंगी है, आखो सतनाम ये खराब तो नहीं मौसम हुई। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे मेहो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसा। सारे जी जंत सारी बनस्पति मौलदी है खिड़दी है हरियावल बढ़दी है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच बचन आउंदे ने कि मीह पैंदा झड़ियां लगदियां ने, गुरमुखा झखड़ आउंदे ने, हड़ भी आउंदे ने। ते आपां मीह पैंदे विच भोजन छकना तो नहीं बंद करदे, वो तो बनदे ही रहिंदा। चाह सगों चार बार ज्यादा छकेंगे जिदण मीह पैंदा हो। प्रशादे भी इसे तरह जिहड़े गुरु दे सिख ने जिमें शरीर की खुराक हर रोज छकते ने, मीह पवे गर्मी होवे सर्दी होवे, इस तरह गुरु दे सिख रूह की खुराक आत्मा की खुराक जो वाहिगुरु का नाम है सेवा सिमरन है, वो भी चखड़ चहंगी में वरसै भी गुर देखण जाई। समुद्र सागर होवे बहु खारा, यही पानी नहीं जितों आप लंघ के आने, यह जा तेजाबी पानी होवे जिथे शरीर नू लगे साड़े गाल दवे, पर गोर सिख लंघ गुरु पै जाए। ते फिर प्रमाण क्यों दत्ता है, जिमें ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ते फिर महाराज ने सिख दी निशानी भी दसी, कनासी राग पढ़ो। गुरु जी बचन करदे ने सिखो मच्छी किनू कहंदे ने, सतगुर कहंदे शरीर वेख के किसे जीव नू मच्छी नहीं कहना। मच्छी कहना किनू है, बिन जल प्राण तजे
ਹੈ ਮੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਕੱਛੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੋ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ। ਪਰ 42 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜੂਨੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਦੇ ਮਰਜੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਹਾਵੇ ਸਿੱਖ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਵੇ ਮੱਛੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੱਛੀ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ

बोलो सबको कहे इंद्रा ने मनो कही कबीरति हो गए करियारे उभयंतू नाही उड़दा तो इसे जान मारी भगवंतू कबीर चंदन का दुर्बा भला तेरी भक्त पलासू ओ ते चंदन हो गई बस ही चंदन पास कबीर बांस बढ़ाई बुढ़िया उम्र डूबो को चंदन के निकले वसाई बांस संगठन हो कभी दिन गए आया दिन से दिन चाली साथ पाए को आड़ा मारिया।

मरने ही ते पाई आई पूर्ण परमानंद राम पदार्थ पाए कई कबीरा दस न खोल नहीं पत्नी पारकू नहीं दातू नहीं मोल कबीर तो सोचित कर जान तू ठाकुर राम पंडित राज भूपति अवे कौने काम।

चाहे संगती परसा बच्ची चाहे हर के गुन गाय कबीर मरता मरता जब मुआई मरत न जाने कोई ऐसे मरने जो मरे दौड़ना मरना हुए कबीर मानस जन्म तुलप गए होने न बारे बारे जो बन बल पंच भूल गए बहना लागे डार कबीर तुह कबीर तू तुरु न कबीर राम रत्न तपही आई जो पहले तुझे शरीर कबीर चंख न चंखी है तुमरो कहना हो गई कर्म करीम जो कर है मीट न सके तो कबीर के सौटी राम की पीछा टिक न कोई राम कसौटी से सहाय जो मर्जी बाहुए कबीर उजल पहरे का परे पान सुपारी खाही एक सर के ना बनाऊ बादे जंपर जाही कबीर बेरा जजराई टूटे चेत हजार हरुए हरुए कर गई डूबई जिन सर पार कबीर हाट जरे जो ना करी किस जरे जो घास यह जग जर पंद कई भय कबीर उदास कबीर गर्म न कीजी आई चम लपे ते हाडू है बरूप छत्र कर ते तुम करनी गाडू कबीर गर्म न कीजी आई ऊंचा देखे वास आज काल बहुने चलाई उपर जामे कास कबीर गर्म न कीजी आई रंक न मसीए कोई अज हो सुनो समुद्र में है क्या जानो क्या होए

सरसंग बंद करे कबीरी है चेतावनी मसा सा रह जाही पासे भोग भोगवाई तिनको गुर लय खाए कभी मैं जानी बड़बो बलो पड़बो सो भर जो दो भक्त न चाडू राम की भावे निंदो लोग कभी लोग की निंदे बपड़ा जे मर नहीं जानी राम कभी अर अवर से अवर तजे सब काम कभी परदेशी के घर

गंगा तीर्थ धरे कर सिंह निर्मल नीर दिनवर पत्न मुक्त हुई क्यों कह रही कबीर कबीर मन निर्मल गया।

मरो तो हर चीज द्वारे मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार कभी ना हम किया ना कहेंगे ना कर सके शरीर क्या जाने किसे हर किया भय कबीर कबीर।

कभी डूबा था तो अपने धमकी मार के बच्चे जब देखे बीड़ा चल रहा तब उतरते हम सड़क कभी पापी पटना भाव की हर पूजा न सोहाए नाग की चंद्र प्रहरे जह दिगंत है जाए कबीर बैद मुआ रोगी मुआ सब संसार एक कबीरा न मुआ जो न ही रो बनहार कबीर नावना त्याई मोती लागी खोद आया कंडिया आया हांडी काटती न हो चरे बोल कबीर ऐसी हो परी मन को भावद की मरने से कहते पुला जब हाथ उस भौरा नीन कबीर रस्ते बांधो चूसी आई जन को मरिए रो अब गुणे हरे मानस आई पल हो न कह को कबीर दागो जल भरी आज काल जह है भूत दुर्जन के ते अपनो अदमाज बिजेंगे लूट कबीर तू को राम को मुतिया मेरो नाओ भले हमारे जेवरी जो खींचे कह जाओ कबीर अपने कथ की क्या दिखलावे लोगी हृदय राम न चित ही ये जपनी क्या होए कबीर बिरहो पयंग मन वस है मन

तू तो फल गाय कभी जाके खोजते पायसोई खारो सोई करके तू बयाए जाके कहता और कबीर मारी मनो पसंद की गई रही ओ झूले गिर गए साधु संग न हो रही कबीर बार पर आई सच रहे चलिए चाहे बात अपने बारे न डरे या तू कटगा।

कभी एक मरण से दो मुए, दो मरण से चार, चार मरण से छह मुए, चार पुख दो नारी, कभी देश देश।

सुन के कौन हवाले की जो निश्चर है आए मिले प्रभात दिन अर बचे राम सो न दिन मिले नारात कबीर नारायण बचोरिया रहर सख मघोर देवल देव दहाड़ी देसोर कबीर सीता का करे जागरूक दुखी जानका बस घर में सुखी सुखी कबीर सीता क्या करे उठकिन जप मरा रही एक दिन शुभ नामे को पसा रही कबीर सीता क्या करे बैठा रहे और जाग जान के संत के बिछड़ा है ताई के संग ला गई कबीर संत के गल न छोड़ी है मार बुला जा जाए पेट ही पुलित हो तुर जपिए ना हो कबीर साधु संग न पीजी है देह जाइए भाग वासन करो पसी है तो कुछ ला के डा गई कबीर राम न कहते हो जरा पहुंचे आए लागी मंदिर द्वार पे अब जगह दे जाए कबीर चल नहीं शुभ है रूपी नहीं करता रे इस मंदिर रुको नहीं ये कह सकने वाले कबीर हल्ला के फल में गया मई जाए पहुंचे कसम तो जो बीत न खाई काम कबीर ठाकुर पूजे मोर ले मन हर पीर से जाए देवता देखी सौंग धरे पूले पटका खा गई कभी पहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार इस बड़वा से जो रहे बूढ़े काली धार कभी कागज की बड़ी मस्त मस्त कई कर्म कबात पहन बोरी पृथ्वी पंडित बारी पात कभी काल करते अब करी अब करते से काली पाचे कुछ न होता जो शिवपुरी आवे चालू कभी ऐसा जंदक देखिया जैसे कोई लाख जिसे चंचल बगुना मत ही ना ना पाते कभी मेरी बुद्ध को जमना करे तिस्कारी जिन ए जम सतिया तू जपिया पर्वतारी कभी कसूरी भैया अमर भय सबदास जो जो बद कबीर की तू तो राम निवास कबीर जह गजी करे कुटम्ब कंसे रहे राम आए पर धर्म राय के बीचे तू माता में कबीर सात दे सूत्र भला है राखे या चागाओ ओ सागत बपरा मर गया कोई नहे नाओ कबीर कौडी कौडी गिर के जोरी ना करोरी चलती बार न कुछ मिले नई लंगोटी तोरी कबीर वैष्णो हुए तो क्या भया माया मिल माया बाला बोली चार कबीर वैष्णो हुए तो क्या भया माला मिल चार बाहर कंच बहरा पीतल परी भंगारी कबीर उड़ा हो रहा बाटता अज मन का अहवाल ऐसा कोई दस हो तो मिले भगवान कबीर उड़ा हुआ तो क्या भया हमसी को दुख दे ऐसा तेरा दस है जो तरणी में खे हुई कभी खे हुई तो जो उड़ला के अंग हर जने ऐसा चाहिए जो पानी सरवंग कभी पानी हुआ है तो क्या भया तीरा दाता हुई हर जने ऐसा चाहिए जैसा हर्षी हुई उच्च भवन कन का बनी सुख बजाओ सारा सही कांत भली मधु करी संत संतन गाई कबीर पाटल ते ऊंचे भला राम बन जे थाए राम सुने बहरा जब पर मेरे भाई कबीर दंग जमन के अंत दे सहज सुन के घाट तब करे मटिया थोज तुम जनवात कबीर जैसे उपजी पेड़ते जो तैसे निभे और हीरा जिसका बपरा पूजे नरत्न करोड़ कबीर आए तो चंबो देखियो हीरा हाथ बताए बंजन हारे बहरा तो भी बोले जाए कबीरा जहाँ जन के कर्म है जहाँ चूरते पाप जहाँ लोलते कल है जहाँ समाते है आप कबीर माया कभी पहुंचे भया जो मान तुझे नहीं जाए
मान मुनि मुर्मद गलगले मान सबे तो खाए कबीर साचा सरकर मैं मिलिया तै जुबाया है तो लागत हुई तो मिल गया अपना कले जीते तो कबीर साचा सरकर क्या करे बस था मैं चूप अंदर एक मिला की जो बांस बजाई फूक कभी है जो धान सगन कहने सब बदी की नारे सास बटन तो मैं पुजे हर जन की पनिहारे कभी नित नारी क्यों नहीं दिए तो हर चोरी को माल ओ मांग सवार देखे तो वो सुमरे हर नाम कभी सुनी पाई चुप भई कभी बंदी तीर कबीर हीरा बंसिया मान सरोवर तीर कबीर हर ही रजन जहरी लेके मांडे हाथ कभी पई पर खो कभी उनके साथ कभी ताम पड़े हर सुमरी है ऐसा सुमरे नित अमरा प्रवासा करो हर क्या बहोरे बेटी कबीर सेवा को दे भले एक संत ये कराम राम जी दादा मुक्त को संत पावे नाम कबीर जे बारिज पंडित गहे काचे परी बहीर एक अवगत का ती राम के ते चढ़े कबीर कबीर दुनिया के दुखे बुआ चाल दुल की चाल सब को किस गला दिसी बने तेरे मसाने कबीर डूबो गोरे बापड़े बहु लोगन की कान तारे से के जो हुआ तू अपने की जान कबीर चली मदुकरी नाना बद को नाज दावा कहो को नहीं बना देश बड़नाज कबीर दावे दज न हो तुझे निर्दावे रहने संत जो जन निर्दावे रहे सो बने इंद्र सो रंत कबीर पाल समूह आए सरबर भराए तीन सचे तो नीर पाग बड़े तो पायो तू भर पियो कबीर कभी परवाते तारे किसे ओहे किसे शरीर ओदो अख न किसे सो गए रहो कबीर कबीर पोछी कैठ की बैरस लागी याद पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उभरे पाग कबीर संसा दूर कर आगत है बिहार बावल ने फिर सोद के है चलनी चितनाए कबीर संत न छाड़े संत ही जो कोट के मिले असंत मले आगर भयंग बेड़े कैसी चलता है न पगंत कबीर मन से चल भैया पाए अपने मुझे जिंद वाला जग जा रही है सुजन के वो समान कबीर सारी सजन हर की।

कबीर जी तुम्हारे जोर पर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब का डाय होगा कौन हवाले कबीर जोर की ऐसे जुल्म है बहुत बाप खुद आए डॉक्टर लेखा ले मार मुह खाए कबीर लेखा बिना सुना जब चुकी हो ऐसा के दीवन में पलन पकड़े थे कबीर पति अलग का सुना दो तुबरी अब दो खड़ दर से परे अचारा से दो कबीर मेरा मुझ में किसने ही जोग तो है से तेरा तेरा दिल को सौंप दे क्या ला दो मेरा कभी तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो कभी आपा पर का मिट गया जब देखा था तू कबीर में तारा चिप गए तू देता प्रयास मनोर तो कोई न पूरे हो क्या नहीं उस निराश कभी हल्का सुमरन जो करे हो सोची है संसार ये तो कदे ने डोल ही जिस रात से सजनहार कबीर कहानी पीर पे सजो लिए छदाए बड़ा बुलबुली भावनी प्रकट हुई जाए कभी ताले टोले बन गया जज बड़न तो जागे न हर बचे न कर बटे हो कल पहुंचे आए मोहल्ला पंजवाए कभी तू तुल भूख लाए टंग पचे उड़ बहाए करमी से ग्र पाया जिनको जिन हो लिया छड़ाए मोहल्ला पंजवाए कभी करती सब की तस्कर वैसे कैसे करती पर न बैठी इनको लाए लाए मोहल्ला पंजवाए कभी चावल करने तो मोहली लाए संग सिंगी बस जब पूछे तरमाए नामा माया बोया पले चरमी पे का हो ची पोछाए ने राम ला बो ची पे नामा कह तले चुना मुक्ति राम समाल हाथ पाओ कर कम सब चित निरंजन नाल मोहल्ला पंजवाए कभी हमरा को नहीं हम किसी के ना से जिन्हें रत्न चाया किसी में समाए है कबीर की कहे आटा गिर पर कसने आयो हाथ इसे पीर चप आए सोई ने मेरा साथ कबीर मन जाने से बात जान कही है गुण करा कहूँ के कुछ लात हाथ दीप कुएं पर कबीर लागू तू सुजन सो बाकी लोग जाने कहा से तू जी को बने जाके जी पर आने कभी पूछे मरो है पिताजी कहे है मरो सवारी साधे साधे तीन हटे घर में पौने चार कभी जो मैं चित पूरा करे क्या मेरे चित में हो अपना चित में हर करे जो मेरे चित न हो मोहल्ला की जाए चिंता भी आप कराए से अचिंत भी आते दे नान से सलाही है जो सब अनुसार करे मोहल्ला पंजवाए कभी राम न चेते रिया लाल चमा है पाप करम तो मर गया और पुनी सिनेमा है कबीर काया का ची कर भी इम्र का ची धात साव के खेतर हम बजे मेहनत बिंदी बात कभी तू सोते से तू पिए न सोई आसार रात उसके कूकने कभी तो उसने पुकारे कबीर काया कजली मन भया मन कुंत्र मैं मनते अंत ज्ञान रत्न है खेत बोला संते कभी राम रत्न मुकुदरी पाके आगे खोलो तो आए मेरे दो बहते ले दो महंगे बोले कभी राम नाम जाने नहीं पालो कट बुटाबे कंधे ही में मर गए बहे वही ना बंबे कभी राखी के मत गए पल पल गए बिहाए मंजन जान छोट हुई जमती अदमा मयाए कभी तब रूपी आम है अलूपी बया गए हाय रूपी सद है जिन तजी आबाद जवा गए कबीर ऐसा बीज भाई बारह मास फलंतु शीतल छाया जहर फल पंखी चिल परंतु कभी दाता तब दया फल उपकारी जीवंत पंखे चले दे साधु वेखा फुल फलंतु कभी साधु संत प्राप्ति लिखा हो नलात मुग्ध बड़ा दपाई है ठाक में अब गड़कात कभी एक घड़ी आदि घड़ी आदि होते आदे पत्नी से की दोस्त है जो तुम्हें सोला दे कबीर भांग मछली सुरा पाल जो भी प्राणी खाते तेज बर्त नेम की है तो सगर साथ लगा है नीचे नौन करे हो दो साल खत्मा से सब्र से खेलो पुस्तको किसी ने खा गुना है आठ जाम का सुधरे तो नेक रह दी है।

बुझ नहीं कब मैं जीव चुकी हूँ कभी बामन गुरु है जब बताए भाई दंग का गुरु ना है आर्य रूपे पत्नी आए चार रूपे दो बासे हर है खाओ गुरु तुम बिखरी हाथी तुम्हें जा गई कहे कबीर गुर बलि बजाए चूती हो के खाए कभी जा तो साध के रम के इस बात कर गए खेल के हाल करे दुख से हो पाए कभी जा तो साध के रम के ताकि से पूछे नहीं ताकि सरसों के नीचे न खल पाई न तेले ढूंढ तो डोला अर्थ नती अर्थ तो लही संत कहना मैं क्यों पाई है दिन पर जू तो भगवंत हर से हीरा छड़ के हरियाण के आस तीन अलवर जाएंगे सब पाखे रविदास कभी जो कहे करे तम धर्म करे नहीं तो कर बैठ।

सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर राम कोर असंख अमर कर जाय जोर असंख बड़बड़ हत्या कमाई।

नाथ माए केते मंग जोर पार केतिया गणत नहीं विचार केते खपत टहम बेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूर्ख खाई।

अमृतामृताय जपाकृतामृतामृताय निर्नायकाय कलकायकाय विश्वाम्परहाय करुणालयाय नृपनायकाय सर्वपायकाय पाव पंजन है अर गंजन है रप दापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बास है जस के जस है भुजंग प्रयाति छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भांग भांगे अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे दरभंगी दृकाले अनंगी अकामे

अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रो जिदे अठव दुर्गाता सकल मलेश करो ऋण काता जे अस तो तब सरनी परे तनके दम तनके दोष लोग मरे

0: उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सच्चे तेरे खंड सच्चे प्रवण सच्चे तेरे सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा हमारे सच्चा दीवान सच्चा तेरा मन सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा के लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत।

स्वाद धरती स्वाद प्राणी स्वाद साथ लगे प्राणी उस्मात जो उस्मात बुझो उस्मात मुख्य स्मात भोग उस्मात उस्मात चला।

0: पौड़ी नदर करे जे आपड़ी का नदरी सतगुरु पाया इसके प्रतिजन प्रमेय ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुने लोग सुबाया सतगुरु मिले छिपाया जिन विच हो आप गवाया सचो सच बुझाया
1: प्यारे गुरु मुकुट

पौड़ी नाव तेरा निरंकार है, ना जाइए नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिथदा देखा जे आप गवाइए, जे लोड़े चंगा अपना कृपन होनी सदाइए, जे चरवाना पर हरे चरवे सिर दिया बोले है ना परिये पाए, बोले है ना परिये पाए।

पौड़ी बिन सतगुरु किन न पायो, बिन सतगुरु किन न पाया। सतगुरु विच आप रखियो उनका प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह जगाया। उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पढ़ पढ़ कटी लगी है पढ़ पढ़ पढ़िए साथ पढ़ पढ़ पेड़ पाया पढ़ पढ़ कटी का पढ़ी जते मरत पंत पढ़िए जते मां पढ़ जते आ जा पढ़ जते साथ नानक लिख

0: लगा ले। लक्ष्य की अपने नाम नानक तन न
1: नाय मनी पतुग सलाई सोत दर्गेंद्र पाइया तगना टूट सपूत तगना दृढ़ तगना नारे पाल के तुमने तो दाढ़ी तगना पैरी तगना पी तगना जेवा तगना अखी वे तगा प्यो ते वड़ता गया उड़ा खत्ते लै पहाड़ करे आ कट

0: कृपा करे सहायकार कराए जी तो सेवक सेवा करे हुक्म मने होवे प्रमाण सा खसम का महल पाए जी खसम भावे सो करे मुने चिंदा सफल पाए जी सादर के बंदा जाए जी सादर के बंदा जाए
1: बोली गवर्नर के नाते

0: इतने हरी पवन को पदन खड़े नर नान का जिनको नगर कर मोहल्ला दूजा
1: आपके सब्जेक्ट

श्री गुरुदेव नमः अस्तदे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मह मिटावो। सिमरो जास विशुंभर एक, नाम जपत अगंत अनेक। वेद प्राण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एकाकर। तिनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनि न आवै। कंखी एक दर्श तुहारो, नानक संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रव नाम, भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दूर जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभु सिमरत कच विघ्न न लागै, प्रभु कै सिमरन अंजन जागै। प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु कै सिमरन साध कै संग, सर्वन धन नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होय सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उधरै मूचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछु सुझै। प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरह से धन बनते, प्रभु को सिमरह से पत बनते। प्रभु को सिमरह से जन प्रवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन के मंगर वाला। प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तन सब बलिहारी। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरह तन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपाते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कभु न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन नेचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक जन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंत जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार्ग एह जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। झूठत नहीं कोट लख वाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघ्न जह आय संभार, हर का नाम तत्काल उधार। अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग।
जिह मार्ग के गण जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जह पैंडय महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सियानु, हर का नाम तह नाल पचानू। जह महाभयान तप बहुकाम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंगर से रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन कै मालक दीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओत सतानी, हर प्रताप जन अर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे। पार जात एह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व तंडोल। पूज सनाहे हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्य करिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राति, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है भरभूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावै, तौ की होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कच नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कभू न बिख्या टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए कच्ची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पत्त बहुमूच। बहुत स्याणप जमका पौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। देख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट अपाव दरगह नहीं सिद्धै। झूठ सुनाही ऊह पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमदानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे। जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होमै छोरे। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सौ गनिय सबते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समदृश देता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन कहो धन तेरो नाओ, मिथावे को नाव तेरा थाओ।
निमाने कौ प्रभु तेरो मान सगल घटा को देव हो दान कर्म करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोय सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मन हरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार इन्या सो प्रभ सदा समाल जिनकी आतिस चीत रख नानक निधि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साध सवार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्स ले हो तव नानक सीध है जे प्रसाद धारु पर सुख वस है सुत प्रात मीत बनता संहस है जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जोरा खनहार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जहाँ की सेवा नव निंद पावे ता से मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी पहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा इह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मह पत बिकराल नानक काट ले हो तब दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहीं कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ दिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा नै मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूब कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहो न सी जय बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण विखोट गुवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार।
ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰਪੁਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੈ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲ ਨਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤਹਿ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਉ ਸਿਉਂ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ, ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਸਨ ਆਵੈ ਕੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਗਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਵਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਤ੍ਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਣ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਕ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਭਾਵ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਖ ਵਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੁੱਧੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰ ਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁੱਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਤ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਦੇਹ ਕਟ ਬਸਿਓ, ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਨ ਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਧੀਨ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ। ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕੱਚ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਸਨੰਦਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸਤਪਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੌ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪੈ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਗਰ ਲੁਭਾਵਹਿ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰਤਾ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕਉ ਮਨ, ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤੇ ਸਦਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਰ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਵਤਾ ਕੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਰੇ ਜੈ, ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ, ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ।
जिन तेरी मन बंत बनाए उठत बैठत सद तिसे त्याए तिसे त्याए जो एक अलख है निहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद जे प्रसाद पेख बिस्माद जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत भाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मन हो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस जान मन सदा हजूरे

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी।

ब्रचे बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट वन पर में उदासी।

परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्तपरी। कर्ण करावन करना जोग जो तिस भाव सोई होग, खिन मह थाप उथाप नहारा अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रह समाई। प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पात्र त्रावै। प्रभ भावै बिन सास तिराखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै। दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिरसै अंतर जामी। जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै। कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै। इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै। भरमे भूला दह दिसतावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले। थिन महनीत कीर्त को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज। जा का दृष्ट कछु न आवै तिस सत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गणै जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बंत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार। कबहू नृत करै बहु पात कबहू सोय रहै दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल। कबहू होय बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा। कबहू अकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू

नानक गर्भ गली अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्कौ कर्म वंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मह होए जाए भसमंत किसे न बद आप अहंकारी धर्म राय किस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा अभिमान सो जन नानक दर्द है परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवे हर दर्ग है कौ कैसे गवे आप सौ जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोय जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने रंग सब के दूर सब हूँ कै संग बुझ देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिन स आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोय संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जोन लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई
संत का नंदक महात्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का नंदक राज ते हीन, संत का नंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आते ही खाहे, संत के दुखी पावन राखन हार, नानक संत पावे तैं ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटा अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रिष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह दीचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नाम।

नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी मानक की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रह अघाय बहुरना तृष्णा लग आए मारे राख एको आप मानक कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन स सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन हो ते सुखी एक को एक एक पछाने इस उत की ओह सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हे निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुझ है जिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अनगिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तुसह न लागह दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे तो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब बुझया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सूखम सोई अस्तूल न किछ जन्मे न किछ मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जात जिन प्रव जाता सो स्वभावंत सगल संसार उदर तिनमंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण।

सोई लागे, जिसनों कृपा करे वड भागै, नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाय होवै सो होए, करणै हार पुछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीत लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन।

लपत रहो रस लो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर गह सोय, एह वापार विरला वापार है, नानक ता कह सत बलिहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्वनिधान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिस का ओह करना जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी।

सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद्रूप मंगल सब जाकै, सर्व थोक सुनिया है घर ताकै। राज महराज जोग मह जोगे, तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगे। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया। जा की लीला की नित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम त्यावह से। त्यो गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवै जाए। ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना देख करह एक रंग। नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चल करे किन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए। नाना विद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पावन, नाम के संग उदरे सुन सर्वन। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश। सत नित बुझे जो कोय, नाम जपत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिस किस दृष्ट सो करने हार, अगर न बूझ करत।

स्वाद। प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरह संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे।

सास सास स्मार है, अपने जनका पर दाताक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत रख है, ताकि गत मित कोई न लख है, प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंच दे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मह काल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लाख है, जिसका साथ न काट आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरखे जात, मार न रख है अवर न कोय, सर्व जिया का रख सोय, काहे सोच कर हरे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिया, ती अमृत एह मन तन प्रतिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया।

तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कच

ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम। सैस सियाणप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन कर्ण आघाने, मन संतोष आत्म पतियाने। पूरा गुरख हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जेवा एक पुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। काहू बोलना पहुँचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण थी ओही, कला तहार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे।

होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न चूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भक्त करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ हसवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै न बिगाना नाम विस्तार नानक पछताना गुरु की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहो मन मी

जन्म जन्म का टूटा गांठ है, गुरपुरै तत है बुझाया, प्रब अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जपो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए त्रिया संसार, बिन भगति तन होती चार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इही सुआओ, नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कह मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार भगत।

अनक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर

अष्टपदी जब अकार यह कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक कहो किसे व्यापत जब अपन आप आकार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेल आप वर्ती जा नानक करना हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज स्वभाय तब शिव सतत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निड्र कवन कत डरै अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अग्न अपार अब नासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन अवमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कह कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूत कवन तृप्तावै करण करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद पुतेव कहाँ को चीन जब आपन आप उतार तो सगन अपसगन।

आप यह अचल अचेत अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप उसको आप है आदेश तेह गुण का नाहीं प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच पे ऊंचा नानक आप उसको आप है पहुंचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में तीनों विस्तार पाप पुन तह पई कहावत।

उनको रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जाने आप, अंतरजामी रहो व्याप, प्रतपाल जीअन बहुपात, जो जो रचो सो तिसे त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास करमान्या, करनहार नानक एक जान्या, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अंगन पूजे गुर के पैर, एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुहाओ, आठ पहर प्रभ देखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो, हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उर तार, पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस ताज परीखिया, मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए, सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निभ खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवह जाहे, तिससे दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए, निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै।

उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस सो होत निहाल ताकै नित न आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परदास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माहे अनकरंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देहि मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धर्म माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख शशि अर सूर नक्षत्र मह एक।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जा का नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पार ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। जित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महान कै माथे, नान पोदरे तन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक ने भी खेप हमारी। प्रभ की औसत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्कर वेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख तने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग मह ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। जन्म मरण ता का दुख निवारे, दुलभ देह तत्काल उधारे।

0: नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊच ताकी सो बाबनी नानक ए गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: किरबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आज दे इस हफ्तावारी विशेष दीवान दी आप जी ने सतगुरु जी दे चरण कमलां विखे हाजरी भरी है और बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरां दे अमृत बचना दा कीर्तन आप जी ने सन्मान योग भाई साहब जी होरां पासों श्रवण किया है। आओ जो इस स्थान ते सतगुरु की कृपा नाल आपां बाणी दी विचार प्रारंभ कीती सी जैत सरी की वार ते जिस नूं उचारण करन वाले बाणी दे बोहित ते शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने छे पौड़ी और श्लोकां दी विचार हो चुकी है। अज आप जी ने सतवीं पौड़ी दा पाठ श्रवण कीता ते करो कृपा साध संगत अपने अंदर नूं एकाग्र करके सतगुरु दे चरणां विच बेनती करिए। हे मेरे मालक, मेर दे घर विच आए हो, जे तुहाडे बख्शे हुए उद्दम नाल आप जी दे पवित्र दरबार दी हाजरी भरन दा सुभाग प्राप्त हो गए ते कृपा करो इस हाजरी दे नाल अपनी हजूरी भी बख्श दिओ। आप जी अपने चरण कमलां नाल जोड़ लवो, करो कृपा साध संगत ते गुरु जी दे चरणां विच बैठन तो भाव भी एवे सच जानो के इह हिरदा किते सतगुरु दे चरणां विच ओत पोत हो जाए। करो कृपा

गुरु पंचम पातशाह जी आप बख्शिश मेर कृपा करके विच वरतो अपने अमृत बचन दी विचार आप ही मेर करके करा लवो करो कृपा साध संगत आशीष बख्शो और प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश गुरमुखो।

0: पढ़ पढ़ पंडित करे विचार।
1: धर्म ग्रंथां दे पाठां नूं लोकां ने संसार दा संदेई बनाया,
2: ज्ञान ते लिया ही नहीं, ओ बाणी नूं धंधा बना लिया। कईयां ने सारी जिंदगी पाठ ही कीते है धंधा बना के, कईयां ने कराउण दा धंधा बना लिया भी बल्ले बल्ले होएगी चलो कराओ, भी लोकी कहणगे पाठ नहीं कराया, पाठ कराउण दा धंधा बल्ले बल्ले लई लई होमे नूं पट्ठे पाण लई लई। ते कईयां ने पाठ कीते धंधे लई, इत्थे भी पाठ है उत्थे भी पाठ है, कई थे पर जिहड़े बाबे पंजाह पंजाह पाठ कट्ठे रखदे आ बहुते पासियां नूं ते करना भी नहीं आउंदा पाठ, इहनूं भी पा दे इहनूं भी पा दे, इन्ने पंजाह पंजाह पाठी अज कित्थे लभदे, पाठी ते पंज लभणे उत्थे होए पए अज तक। बहुते पाठियां ने ते कम कार करने शुरू करते, पाठ पाठ करने वाला भी हौली हौली छड्डदे जांदे गए, ते धंधा बना लिया पाठ करना पाठ कराउणा, कहिंदे इह ते सिर्फ इक रह गया धंधा। फिर पंगती सुणो दुबारा,

0: हम हैं नीमो से गरीब करोर परे। धन गुरु गोबिंद सिंह आंदे मैं ते गुरु इन्हां दा बनाया बनिया मेरे वर्गे ते करोड़ा गरीब इत्थे तुरे करदे आ। सेव करी इन्हीं की पावत और की सेव सहात ना जी को, दान दयो इन्हीं को पलो और आन को दान न लागत नी को। महाराज जी किड्डी सोच उची आ, ब्राह्मणा नु दान नहीं देना, कन पातियां नु दान नहीं देना, मेरे खालसे नु दान करना। आगे फले इन्हीं को दयो, जग में जस और दयो साथी को, मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो तन है सब इन्हीं को। गुरु गोबिंद सिंह के जरा सिर तो पैरा तक मेरा मन तन वो सारा मेरा खालसे दा है। इनिया वडियाईया कलगिया वाले पाछा देन वाले बचित्र सिंह नु गुरु उत्ते भरोसा सी। महाराज तुसी चाहो ते कीड़ी हाथी ना लड़ सकदी, महाराज एक हाथी नहीं, ताड़ी मेर होए मैं हजारा हाथी अकेला सकदा। जो मर्जी मेरे को सतगुरु करवा लो। इधर हाथी नु शराब प्याई जा रही है, पीतियां दे नाल शराब प्याई जा रही है, हाथी दे मथे ते तवे बने जा रहे है, ओदी सुन दे नाल तलवार बदी जा रही है, हाथी नु शिंगारिया जा रहा। एक सिख ने दस्या, महाराज हाथी नु बड़ा बाई धार दे राजे शिंगार रहे है। कलगिया वाले पातशाह जानी जासियां दे जेड़े शिंगार रहे है ना, उन्हां दा हाथी ने शिंगार करना, उन्हां दा शिंगार करना। इधर हाथी नु तैयार कर रहे है, इधर भाई बचित्र सिंह तैयार होया, तैयार हो रहा उस सूरमे की चढ़त ओदी तैयारी तुहाडे सामने जोड़ी एक कविता विच है, इउं बयान कर रही है जी।
1: दसवें